प्यारी साध संगत महापुरखा की याद में जुड़ बैठे हो। धन बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले समय समय से सतगुरु जी महापुरखों दिया प्यारिया दिया ड्यूटियां लाते हैं। टुटिया हुई रूहां बाणी दे नाल जोड़न वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लाउण वास्ते वड्डियां भागां नाल सानूं संगत प्राप्त हुंदी है प्यारियां दी। आओ जितना समा सतगुरु जी दी हजूरी विच बैठना है प्यार नाल शब्द नाल सुरत नूं जोड़ के सतगुरु जी दा जिथे शुक्र करिए महापुरखां दे जीवन विच्चों वी कुछ ना कुछ अपने जीवन में टालीए ता जो साडा जीवन भी गुरमुखा प्यारियां दी संगत करके सतगुरु जी के चरणों नाल जुड़ जाइए। समराज साहब हुण कह रहे सन वाकई इतों के सारे सिंह बड़े प्यार वाले हैं, सतगुरु जी के रहमत के पात्र हैं, सेवा सिमरन विच हर वक्त जुड़े रहिंदे हैं, बख्शिश है इस स्थान पर। और आप जी नेता प्रति संगत करते हुए वड्डे भाग हैं, सारिया सिंघां ने बहुत प्यार बख्शिया है दसदियां नूं। इतों के हैड ग्रंथी यानी गुरदीप सिंह जी अपार रहमत है, संगत विच नेता प्रति जुड़ते हैं, मेहर है, बहुत लंबे समय तो दास उन्हां नूं जानते हैं, बड़ा प्यार है साडा, सदी भी यह प्यार बनिया रहे। और आप जी पास हैं सतगुरु जी हमेशा चढ़दी कला नाल आप सेवा लैन। साढ़े सारे कीर्तनिया ने बलविंदर सिंह जी होना ने

मन कामना तीर्थ दे छुटे कर जमाना मन ते हुटे सोच करे दिन सरात मन की बैना तन ते जात ऐस देही को बहु साधन करे मन ते कबू न बिखे ठरे जल धोवे बहु दे अनीत शुद्ध काहु काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक ना उतरे पतत बहमूच बहुत सियाण जम कहो भाव ब्या पै अनक जतन करते सन्यात्रा पै भेख अनेक अग्नि पूजे को।

जिसकी वास्ते सराके राखे प्रभु की आज्ञा माने माते बहुते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होत जान नेत बिरखी छाया सो रंग लावे हो बिन से मन पछतावे।

जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हंसकर चले, जय प्रसाद पूर्ण फल, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सह सुहावे, ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तू पर संसार।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पराइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय उदाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सरकर करता, ब्रह्म ज्ञानी सब विष्णु बढ़ता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोग जी का

अपने सुख दुख सारण आपे में लेकर पाल गुरका जब तपहने हाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे भट पागे नाम जात पावे बसराम नान तन पुरख उत्तम कर मान जो कुछ करे से प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सहसवाय हो सोए करने यार पिछाने सोए प्रभु का किया जान मीट लगाना जैसा सा तैसा दस्ताना जिस ते उपयोग तिस माहे समाये हो सुख।

और पासा मीत सारो चरण कमल रथ में और तारो कारण कारण सो प्रभु समरथ दर कर कहो नाम हर बात यो तन सचो भगवान संत जना का निर्मल मन एक आस रखो मन माहे सब रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार कुंड तावे सो तन हर सेवा ते पावे जैस सुख को नित वाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जै शोभा को करे भलिकानी सा शोभा भज हर किसानी अन को पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर है अवगत लाए सर्वधान में हर नाम धान जप नानक धर गए प्रवान मन पर बुद्ध मार के नाए दे ताप दे आवे ठाए ता को बिघन लागे कोई जाके दिते बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाम सिमर सिम सदक पाओ पावें से पूर्ण हो आस भगत पाए आत्म प्रकाश तत्कर जाए बसे अविनाशी को नानक काटी जा भासी तत विचार कहे जन सत्या जन मरे सो।

सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहां लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार साहस सियाणपां लख हो है ता इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कहै न कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार वी

संतोख थाप रख्या जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता भार, धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कमण जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए।

तीरथ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सबगुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत्माणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार।

चिंत हैं, सुनिंत हैं, लिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, जरपट छंद त्वा प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, सावल छंद त्वा प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे स्रभंगी अनूपे, न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै, नृसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्वा प्रसाद, कै जाहर जहूर हैं, कै हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राजक रहीम हैं, के रोजी देहंद हैं, के राजक रहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हिरासल फिकन हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तल निवास हैं, गंजल गनीम हैं, अर्जायक रहीम हैं, समस्तल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, कै नरकंग प्रणास हैं, वे हस्तल निवास हैं, के सरबल गवन हैं, हमेसल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तल अजीज हैं, परम परमीस हैं, समस्तल अधीस हैं, अदेसल लेख हैं, अमेसल अपेख हैं, जी मीनल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुर अद जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुवास हैं, कै अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अभंग हैं, मधुपार छंद त्वा प्रसाद, मुणमण प्रणाम, गुणगण मुदाम, अरब

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाह निहर हो, ताके ताव तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शाह श्वैस कैन कोई।

नानक दास सदा बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नाओ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे। आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ति हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई ते गवाही देख सुन के अंडट कीता तिना प्यारियां सच्चियारें दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तां नारियां नाल चरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानी कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निवाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहे। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खाल

नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब कुछ है जिसते सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाइया।

रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यों

आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिना वरना कोई कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिले दिव्य दृष्ट होई ए सरवणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया होवा रसना रस समाणी